0: npr.nz/show/Sunday sermon or on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts.
1: Here at the BBC Science in Action, we bring together some of the most fascinating science stories from all over the world.
2: This is an opportunity to go out there and monitor the sea ice conditions as it forms all the way through the cold, harsh winter until it starts to melt again in summer.
1: Each week, we might have the very latest in biology, astronomy, or climate science.
2: We have to take another icebreaker to get to our icebreaker.
1: Science in Action from the BBC.
3: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
4: नमस्ते, मैं हूं निर्मला नंद और आप सुन रहे हैं परिचय। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि फिजी और भारत से न्यूजीलैंड आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले लोगों को हौसला और प्रेरणा दें। हम ऐसे मेहमानों से मिलेंगे जो अपनी कहानियाँ, अपनी मुश्किलें और अपनी कामयाबी हमारे साथ बांटेंगे ताकि उनकी कहानी से दूसरों को प्रेरणा मिले और साथ में होगा सुरों का सफर भरा हुआ लाजवाब गीत संगीत से और कुछ ज्ञान की बातें। तो बैठिए आराम से और जुड़ जाइए हमारे साथ अपने ही शो परिचय में।
5: नमस्ते, वेलकम टू परिचय। मैं हूँ शेरिल मिश्रा। आज मैं ला रही हूँ आप सबके लिए सुरों का सफर। निर्मला जी छोटी सी ब्रेक पर है, आई एम जस्ट सबिंग इन फॉर हर। चलो शुरू करते हैं सुरों का सफर। लेट मी सी आप गेस कर पाते हैं व्हाट द थीम इज फॉर दिस वीक्स शो। तो टिकी रहिए मेरे साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, फिर मैं बताती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं पहला संगीत फिल्म रंगीला से। एंजॉय।

गेस कर पाए. आई नो आप सब गेस कर चुके होंगे द थीम ऑफ द शो दिस वीक. चलो एक और छोटा सा क्लू देती हूँ. हिज सरनेम है कुमार. चलो फोर्थ क्लू ऑन द वे.

0: ये थे हमारे अय्यार रहमान जी. तो होपफुली आप सबको अच्छा लगा सुनकर अय्यार रहमान का कंपोजिशन, रिटन संगीत, और जस्ट अ लिटिल फ्यू फैक्ट्स अबाउट हिम. हमारे भाई साहब रहमान जी, ही वॉज बोर्न एज A.S. दिलीप कुमार on 6th of January 1967, Chennai, India में. हाँ, साउथ इंडियन है इसलिए most of his songs, his composition carries that South Indian twang to it. Uska father R.K. Shekhar was a prominent conductor and composer in Tamil and Malayalam cinema. Uska music shuruat hua hai by playing piano at age 4. Though I think, you know, he was born and destined to do what he is doing currently. So hopefully aap sab pasand kiye और मजा लिए मेरे साथ. चलो, टाइम हो चुका है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ देने के लिए. नेक्स्ट वीक से आ जाएंगी निर्मला जी, वो भी शुरू का सफर ले आएंगी, और फिर मिलते हैं अगले शो में. जयराम जी की.
1: सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं. आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर. आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं, और इस पॉडकास्ट को दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है www.npr.nz/show/परिचय.
2: More information, extended podcast specials, and previous episodes of local programs at npr.nz.